एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय प्रतीत रखिए करते काहे विचारों तित कर गावो सोहिला सिमरिहो सृजनहारो तुम गावहो मेरे निरपौ का सोहिला हौ वारी जित सोहिला सदा सुख होइ रहा नित नित जीअड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तुसदा ते कवन समार संबत साहा लिखिया मिल कर पा बहुतेल देहो सजन आशीषड़िया ज्यों होए साहिब स्यों मेल घर कारे हो पहुचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिमरिय नानक से देवन राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेस गुर गुर एको वेसे अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो घर राख वडाई तो रहाओ विसया तसया घड़िया पहरा थिती वारी माहो होवा सूरज को रोते अनेक नानक करते के वेस राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल रब चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरों करे सगल बन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए

Cavolo nano, cavolo nano. मधुर बैन कोट सैन संग सोभ करत मान सोद जिसे दही भात खाहे जियो। देख रूप अत अनूप, देख रूप अत अनूप मोह मांग पही किनकी शब्द चणत कार खेल पाहे जियो। काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके, ईस भमर ज्ञान ध्यान तरत हिय चाहे जियो। सत सात श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरंकार बेशुमार सर्वर को काहे जियो। सुथर चित भगत हित पेख तरियो, हरनाम सिर हरियो नख बिदार जियो। शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो छदम, अपरंपर पावम लखे कौन ताहे जियो। सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। पीत बसन कुंद दसन प्रिय

जल पाई है चूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किछ तिसकै पास विण बोलिया सबके जानदा किसे आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे प्रगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर बुठा मन तन सब पर फड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम न विसरै जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिना गुरमुख वसिया मन सोए हर बुठै मन तन पर फड़ै सब जग हरिया होए वडड़ै चाल चलुंबलै नावड़ा लिये किस

जन्म जन्म भरमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास कहु नानक हर भज मना निरपै पावह बास।

हरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अल्लाह पहे अठौ नंदन प्रथम राग पहरो वै कर ही पंच राग नी संग उचर ही प्रथम पहर वी बिलावली पुन्याकी गावह बंगली पुनवस लेखी की पई बारी ए पहरों की पांचौ नारी पंचम हरख दिसाख सुनावह बंगाल माध माधव गावह ललत बिलाव लगावही अपनी अपनी पां आसट पुत्र पहरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आला पह संगरागनी पां चौथा पह गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौगाई मार राग कौशक संगलाई मारु मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उभारा खाऊ खटे पौरा नंद गाए अष्टमाल कौशक संगलाए पुण्य आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पार जा संगलाई पांचौ वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बाण्यो आहे बिनोदा गावै सरस बसंत कमोदा असर पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशली पट मंजरी टोडी कही अलाप का मोदी औ गुजरी संग दीपक के था का लंका कुंतले और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौराव कनरा कल्याण अष्ट पुत्र दीपक के जाना साव मिल श्री राग वह गाव है पांचौ संग बरंगन लाव है बैरारी करनाटी तरी गौरी गाव है आसावरी ते पाछे सिंध भी अलापी श्री राग सिओ पांचौ थापी सालू सार्ग सागरा और गुण गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वह गाव है पांचौ संग बरंगन लाव है सोठ गोण मलारी तुनी पुन गाव है आसा गुण गुनी ऊंचे सोरा

सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ का सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ का सिमरन दुख जम नसै। प्रभ का सिमरन काल पर हरै, प्रभ का सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत का

सिमरन कृष्ण बुज प्रभु का सिमरन सबकी सुज प्रभु का सिमरन ही जम त्रासा प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा प्रभु का सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाये प्रभु जी बसहे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमर से तनवंते प्रभु को सिमर से पतवंते प्रभ को सिमर से जन प्रवान प्रभु को सिमर से पुरख प्रधान प्रभु को सिमर से बेमोहताजे

हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग कै, नानक जन कै बिरत बबे कै, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर का नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि।

हर धन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै

तपि सरथि वे अगन माहे होमत प्राण कनकाय सब है वर भूम दान न्यौली कर्म कर बोवासन जैन मार्ग संजिमे अत्साधन नमख निमख कर शरीर कटावे तौ पी हौमै मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटै गर्भ अगमान न मन ते हुटै।

मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम दरे पतत बहुमूच, बहु सियान पजम का पव ब्यापै, अनक जतन कर तृष्ण त्रापै, भेख अनेक अग नहीं बुझै, कोट उपाव दरगै नहीं सिजै, छूट स नाही ओब पयाल, मोहे ब्यापे माया जाल, अवर करतू सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सदगावै, जे को अपनी शोभा लोरै, साध संगे हउमै शोरै, जे को जन मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै,

मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असंबस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान अस्त्र भगत साधकी सरन नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे मिथ्या हस्त पर दर्भ कोहिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर तेरे अरुपाद मिथ्या रसना

की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार,

नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार बिहारी कई कोट पय तीर्थवासी कई कोट बन भरमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तारे कई कोट कब का विचार है कई कोट नम तन नाम त्यावै

कई कोट जन्म है जीवहि मरह, कई कोट बोजोनी फिर है, कई कोट बैठती खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किश

संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सोभा तेहीन, संत के हते को रखे ना कोए, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक भीतर, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जीवन लवै, संतन कै दुखन सर्प जून पाए, संत कै दुखन त्रिगत जून किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै, संत कै दुखन सब कुशल, संत कै दुखन तेज सब जाए।

संत के दोखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दोखी सदा सहकाइए, संत का दोखी ना मरे ना जीवाइए।

अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनों कृपा करें तिसे अपन नाम दे। बड़ भागी नानक जन से सलोक, तजो सियान पसुरजनों, सिमरो हर हर राय, का सर मन रखो, नानक दुख परम को जाए। अष्टपदी मानुकी टेक बिरथी सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रहे अकाए, बौर न तृष्णा लागे आए, मारे राखे को आप, मान क्या किश नाही हाथ, इसका हुक्म भू सुख होए, तिसका नाम रख कंठ पर होए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार।

0: जो किस करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग से सुपाए होवे सो होए करने हार पछाणे सोए प्रभ का किया जठ ऐसा दृष्टाना जिसते उपजे तिसमाहे समाए होए सुख निदान हम बने आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जाने को जान सलोक
1: सर्व कला भरपूर बिरथा जन्म हार जाकै सिमरन उधरी नानक उस बलिहार अष्टपदी टूटी गण हार कृपाल सुरदियां आपे प्रतपाल सगल

जेसो होवे सुप्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मै राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस्ते परे नाही किश कोय।

आनंद रूप मंगल सज्जा कै सर्वथोक सुनिय करता कै राज महराज जोग मह जोगी तप मह तपी सरगृहस्थ मह भोगी त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किनै अंत ना पाया।

नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेक रहे करंग नाना बिद कीनो विस्तार प्रभ विनाशी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे ओ पूरन सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाए सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मण नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रावण कर कृपा जसु अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरखो सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सतकर्णी निर्मल निर्मली जसह बुझाए तसह सब भली सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाए सत बचन साधु उपदेश सत्य जन जा कैर दै प्रवेश सत निरत बूझै जे कोई नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सुकरण हारे वरना बूझ करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक जो तिस पावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पहे बिस्मात जन बूझिया तिसु आया स्वाद प्रभु कै रंग रात जन रहे गुर कै वचन पदार्थ।

सिमृत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग ना चाल तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोत मीत कुटा बर बनिता इनते कहो तुम कवन सुना था राज रंग माया विस्तार

सो भर परे प्रेम रस रंग उपजै जाओ साध कै संग परे सर न्यान सब त्यागम तर प्रगासन दिन लिवलाग बड़भागी जप्या प्रभ सोई नानक नाम रते सुखोए। सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल। सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन मन दुख भ्रम गया इच पुन्नी श्रद्धा सब पूरी।

जब इसका वर्ण चिन्ह जाप्त तब हर्क शोक कह के सह व्याप्त जब अपने आप पार ब्रह्म तब मोह कह के सोत परम आपन खेले आप मरतीजा नानक करने हार ना दूजा।

अबिनाशी सुखे अपने आसन तह जन मरन कहो कहा बिना समझा पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अभिगत अगोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त पूछ

दृष्टारो अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारे आप है का विस्तार जात भाव है त्रेष्ठ उपाय अपने पाण है लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सू सब जगत परोए जा को प्रभु जी आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सबता कह या हाथ दीन दयाला नाथ को नाथ जिस राख है तुस कोई न मारे सो मुआ जैसे मनोह

जन लागा हर एक नाय तस्की आस न बिरथी जाए सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंदन पूजे गुर के पैर।